तेरा जीवन सफल हो जाता। उठ्या घर गया ते इने दूसरे दिन अमीर बंदा सी लकड़ खरीदी इटा रेते बजरी का प्रबंध किया ते इस अस्थान नू बनाना शुरू कर दिता है। लिखते ने विद्वान सज्जन जदो ए अस्थान बना रहा है पहले दिन कुछ कु इन्हां ने इमारत शुरू की नींह रखी ते शाम दे वक्त सोदर रहराज साहब दा पाठ भी उत्थे होया। शाम नू जदो रहराज साहब जी का पाठ होया ते एक अजीब गल कही उस सरदार ने जेड़ा गुरु का सिख अरदास करदा पिया सी ओनू कहन लगा अरदासीए सिख नू गुरु के प्यारिया एक दयाल सिंह दी अरदास कर दें। शायद अज वर्गा कोई हंकारी मन हुंदा ते कहिंदा मैं इन्ना कुछ गुरु नू दिता मेरा नां लई मैं इन्ना कुछ गुरु घर लई कर रहा मेरा नाम रहे। उन्हें सोचा शायद कुछ मंगेगा। कह लगे भाई साहब की अरदास करिए। कहिंदा अरदास कर दई कि पुत्रां दे दानियां एक मेहर करी कि दयाल सिंह दा कख ना रहे दयाल सिंह दी बंस खत्म हो जाए मेरे कर संतान ना रहे जे किसी ने पढ़नी है घटना पढ़ सकदा है। मैं इस करके किताब का हवाला दिता है। कई बड़ी शंका हो जाता है मन अंदर वो लिखते ने कहना कि मेरी अंश बंश ना रहे मेरे कर संतान ना होए ते संगतां दियां अखां झड़ी लागी नीर नाल फरल फरल करके नीर वगे ते एक गल की सरदार जी ए गल ना कहो तुहाडी संतान वधे फुले तुसी इन्नी गुरु की सेवा करते हुए अरदास क्यों करांदे हो। उन्हां ने एक गल कही कहन लगे असलियत जे मेरा गुरु गोबिंद सिंह इत्थे पुत्र दे के गया सी ते जदों किसे ने लाश ढक्कण दी गल कीती ते गुरु गोबिंद सिंह ने पहला पंथ दी गल कीती कि मेरे पंथ नूं केड़ा ढकेगा जिहड़े पए ने। जदों किसे ने साहिबजादियां नूं लै के जान दी गल कीती ते मेरे कलगी वाले ने पहला अपने सिख पुत्रां दी गल कीती जेड़ा गुरु अपने पुत्रां नूं बचांदा नहीं ते कल मैं अर्ज कीती सी फिर बेनती करदिया सोहण सिंह शीतल ने कहा सी कि जदों छोटा साहिबजादा शहीद हो गया ते साहिब ने उच्ची आवाज विच उन्हें काव्य रचना विच कहा कहन लगे हथ शहीदी पा गया जद लाल छुटेरा अखां सामे हो गया ओ बेरा बेरा हथ बन बोले सतगुरु वाह भाणा तेरा तेरा तुझको सौंप ते क्या लागे मेरा उंगली ला के लै गया उन वीर वडेरा जोड़ी जोड़ी हो गया परिवार बथेरा कह लगे हुक्म रजाई चलना जो करे चंगेरा पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कलेरा पंथ वसे मैं उजड़ जा। कहन लगे भाई साहब अरदास करो ए थां पंथ दीए ते पंथ दी ही रहेगी जे मेरे घर संतान हो गई पैसा गुरु गोबिंद सिंह दा प्रेरणा दीए कल नू किते मेरे पुत्र पोतरे थां ते काबज होके ना कहन के ए थां साडा बापू बना के गया पंथ दीए ते पंथ दी रहेगी। लिखदे ने ओ विद्वान सज्जन वाकई ओदे कर संतान नहीं होई ओदी जड़ी जमीन सी ओ कुछ पिंडां विच वड़ दित्ती गई। मेरे कहन तो मुराद उस थां ते उस गुरु के सिख ने सेवा करके ए अस्थान बनाए। अगे तुरिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर दी गड़ी तो निकल गए ने ते जिथे झाड़ साहिब अज अस्थान हुंदा है हजूर उथे टिके ने कुछ समा आराम कीता है। कहिंदे ने सतगुरु नूं जांदियां दो पठाणा ने पहचान लिया एक दा नां अलपू ते दूसरे दा नां गामू लिखे है रौला पा दिता कि ए गुरु गोबिंद सिंह ने। साहिब ने इशारा कीता चुप कर जाओ मोहरां भी सटियां पर चुप ना होए। ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखदे ने हजूर ने एक एक चपेड़ दे नाल दोनों की आवाज ही बंद कर दी बोलन जोगे ना रहे। सतगुरु इथो तुर पए ने हुण आत्मा ता चढ़दी कला विच जिथे हजूर कहिंदे ने कि गुरमुख अंदर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश तिथा ऊंग ना भुखा है हर अमृत नाम सुखवास। जिथे कहिंदे ने कि कोई चिंता झोरा नहीं हर अमृत नाम सुखवास। कहन लगे कि देख उस गुरु की कृपा नाल जेड़े सिख ने ओ वक हो चुके ने पर तुरे जरूर ने सब शरीरक तौर ते नडाल ने तुरदे ने पर शरीर तो तुरिया नहीं जांदा। साहिब जी एक रात रस्ते विच कटीए फिर जा पहुंचे ने माछी वाड़े जिथे अज गुरुद्वारा चरण कमल साहिब। सतगुरु अज थक टुटे ने रात जेड़ी ओ अत दी ठंडी है शरीर नू चीर दी पई है। कहिंदे ने सतगुरु ने उते टिंड दा सराहना कीता है कुछ विद्वान कहिंदे ने कपड़े नाल टिंड नू लपेट लिया ते सतगुरु दी

लगा दाता मैं मजां दा छेड़ू बलदा ना हल वाण वाला पठे वड़न वाला जट जिमीदार मेनू कोई पता नहीं विद्या बारे मैं बिल्कुल अनपढ़ा मैं की पढ़ा सकना किसे विद्वान पंडित कुल पढ़ने पाओ। ते सतगुरु ने एक गल कही कह लगे बुढ़िया तू बिल्कुल अनपढ़ मैं समझना वा पर मेरे पुत्र नू ओ विद्या पढ़ा दे जेड़े शब्द सुन के तेनू गुरु नानक ने बच्चे तो बुढ़ा बना दिता ओ शब्द मेरे पुत्र नू भी सिखा दे ओ विद्या पढ़ा जेड़ी विद्या नू देख के गुरु नानक तेरे ते त्रुठे। बाबा बुढ़ा जी ने मैकालप मुताबक घोड़ सवारी ऊड़ा ऐड़ा गुरबाणी की संथिया तैराकी रसायण विद्या मैकालप रेखदा तारा मंडल की विद्या भी बाबे बुढ़े ने गुरु हरगोबिंद साहब नू सिखाई। एक विद्वान ने तो इतों तक लिखे 64 विद्या बाबे बुढ़े ने गुरु हरगोबिंद साहब नू सिखाईया ने। इहदा मतलब बाबा बुढ़ा किन्ना वड्डा विद्वान सी 64 विद्या का जिक्र थोड़ा थोड़ा विद्वाना ने किया। खैर गुरु हरगोबिंद साहब जी नू पढ़ाया घोड़ सवारी सिखाई बाबा बुढ़ा जी बीड़ साहब चले गए। अज सवाल पैदा हो गया हरिमंदर साहब तैयार है सरोवर की सेवा बाबे बुढ़े ने कराई अज भी वह बेर खलोती है जदों परिक्रमा करके आने अज भी बेर बोल के कहती है कि सदियां पहला कोई पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी ने मेरे थले बैठ के अपने गुरु के हुक्म नु कमाया। बाबा बुढ़ा जी की बेर अज भी परिक्रमा विच है। सतगुरु ने भाई गुरदास नू कोल बुलाया कहन लगे भाई गुरदास गुरु साहबाना की बाणी एक थां ते इकत्र करनी है हरिमंदर साहब विच भी कोई चाहिए साडे कोल समा नहीं संगत कोल मिलदा क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप तैयार करना है। ते पुछया हरिमंदर साहब कौन बैठेगा सतगुरु ते गुरु अर्जन साहब ने कहा बाबे बुढ़े नू बुलाओ हरिमंदर विच बैठ के संगत नू उपदेश ओ करेगा असी बीड़ तैयार करांगे। एक गल याद रखो गुरसिखो बाबे बुढ़े कोल किन्ना कु खजाना सी कि गुरु अपनी थां बाबे बुढ़े नू उपदेश कर ली हरिमंदर विच बिठांदे पए। बाबा बुढ़ा जी नू बीड़ साहब तो बुलाया उस वक्त आए आके गुरु अर्जन साहब ने कहा बाबा जी तुसी हरिमंदर साहब विच बैठ के संगत नू बाणी दृढ़ करानी है ते असी रामसर दे किनारे गुरु ग्रंथ साहब दा स्वरूप तैयार करना है। गुरु अर्जन साहब बाणी लिखांदे ने भाई गुरदास लिखदा है भाई बन्नो जी कलम दवाब की सेवा करते ने गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप तैयार हो गया। हुक्मनामे भेजे कि संगत आन इस दिन आप प्रकाश करने बाबा बुढ़ा हरिमंदर साहब बैठा सुनेहा भेज दिता गुरु अर्जन साहब ने बाबा जी अज ती रामसर के किनारे रात न आ जाने साध संगत गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप तैयार है। देखो किन्ना कु अदबे अज दे महापुरशां नू भी खास करके ध्यान देना चाहिए गुरु ग्रंथ साहब का अदब जिन्ना करोगे कुछ कृपा लै जोगे। जिस बंदे ने गुरु ग्रंथ साहब का अदब नहीं किया सिख हो के उन्हूं ना इत्थे ढोई जे ना उत्थे ढोई जे गुरु के बराबर कोई नहीं। कमाल की गल इतिहास बोलदा जिहड़ी मैं अर्ज कर लगा गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप तैयार है। सतगुरु जी मंजे उत्ते गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप विराजमान कर दिता है। बाबे बुढ़े नू कोल बुला के पुछदे ने बाबा गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप प्रकाश किथे करना ते महिमा प्रकाश का करता लिखदा है कि बाबे बुढ़े ने हाथ जोड़ के कहा श्री गुरु ग्रंथ लायक दरबारा और न स्थान को मरारा हे मेरे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप हरिमंदर साहब तो बिना कोई होर थां नहीं जिथे प्रकाश करिए। अदब दे विच एक ए भी बड़ी रमज है गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप बाद विच तैयार होया है हरिमंदर साहब पहला तैयार होया है एदा मतलब ए सी सिखा जिस थां ते गुरु का प्रकाश करना ही ओ थां अदे वास्ते पहला तैयार कर दे हरिमंदर पहला गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप बाद विच। बाबा बुढ़ा जी नूं कहा बाबा तू सत के है शाम पै गई सोदर का पाठ होया रामसर जिहड़ा अस्थान है बाबा दीप सिंह जी दे शहीदी अस्थान दे बिल्कुल नाल ही शहीदां दे नाल उस वक्त रात लंगर छकन तो बाद सारी संगत पै गई। विद्वान लिखते ने भूम सैन सब तहां विराजे श्री गुरु ग्रंथ मंजी पर साजे गुरु अर्जन साहब आप भी जमीन ते सुते गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप उच्ची थां ते रखिया ते शाम दे वक्त जदों सारे रात

दुखम पातिक बिना सह गुर अमरदास परसी है सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसी है ध्यान लइए पौ मुक है गुर अमरदास परसी है अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जो तो रहै जा सुमंत्र मानवैल है जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले कान हर बूंद बसोरू मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै

परम सम्मान योग जुग हो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों हजूर दी पावन पवित्र इलाही बाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा आप जिया ने सत्कार योग भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी खुरां पासों सरवण कीतियां ने कल दा दिन जो बतीत होया है कल दे दिहाड़े धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे गुरदेव दा गुरगद्दी नशीनी पुरब सी ते गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पुरब नूं आपां अज मना रहे हां। गुरु नानक साहब जी दे इस घर दे अंदर जदों आपां इतिहास नूं गुरमत नूं पढ़ने हां ते एक चीज बड़ी विलक्षण सानूं जिहड़ी नजर आउंदी है इत्थे गुरु दी कृपा ते निर्भर करदा है। 7 साल दा बजुर्ग बाबा भी जे किते गुरु के चरणा भी जुड़ के सेवा करे ते जिस समय लोग कहिंदे ने 70-72 साल दी उमर विच बंदे नूं सूझ कोई नहीं शब्द वरतदे ने इह 70-72 गया। 12 साल गागर ढो के 72 साल दा बजुर्ग भी सिख तो गुरु बन सकदा है। यही विलक्षणता है कि इत्थे 5 साल ते 3 महीने की बाल उम्र गुरु हरकृष्ण साहब जी वो भी गुरु बन सकते ने ते कृपा गुरु करे तो 72 साल का बजुर्ग भी गुरु बन सकता है। आओ गुरु अमरदास जी दे पावन पवित्र इतिहास की और बाणी की विचार आपने करनी है जड़ा अज का दिन गुरगद्दी पुरब आप मना रहे हैं। इस दी विचार इस दिन दे संबंध विच गुरु कृपा नाल आपां विचारने कृपा करके जितने भी बैठे हो ना एकाग्रता जरूर बख्शिया जे। कोशिश करो इस खिंडे हुए मन नूं गुरु अमरदास जी दे चरणा विच अज टिका दईए। जे तां बुद्धि तारक केवल तर्क करन वाली नाल सुणांगे ते याद रखना वह कहा होया केवल तर्क की बिरती वाला लगेगा ते जदों प्रतख गुरु नू हाजर नाजर जान गुरु के बचन सरवण करांगे ते सतगुरु गुरु अमरदास की कृपा वरसेगी। विचार आरंभन तो पहला सतगुरु की बख्शिश कीती हुई गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा अमरदास जी का जन्म पिंड बासर के जो अजकल जिला अमृतसर के अंदर है सन 1479 नू बाबा तेज भान जी दे ग्रह विखे होए। बाबा अमरदास जी गुरु नानक साहब जी तो उम्र करके केवल 10 साल छोटे ने। गुरु नानक साहब जी का आगमन सतगुरु का प्रकाश सन 1469 नू राय भोए दी तलवंडी ते होया गुरु नानक साहब जी का ते बाबा अमरदास जी का प्रकाश इन्हों का जन्म आगमन शब्द वरत लईए के पिंड बासर के 1479 नू होया है। 10 साल बाबा अमरदास सतगुरु गुरु नानक साहब तो छोटे ने। बाबा अमरदास जी दे पिता दा नाम तेज पान है। बाबा अमरदास जी 4 भरा ने ते अमरदास जी सब तो वड्डे ने।
मैं शब्द वरत्या बाबा इस करके वरतनिया अजे वह गुरगद्दी ते विराजमान नहीं। बाबा अमरदास सब तो वड्डे ने, छोटे तीन भरा ने, ते इथों तक यह कारोबार अपना जिमीदारा भी पिंड विच करदे सन। उस तो इलावा महिमा प्रकाश विच तां इह भी लिखिया रेशम दे कपड़े दा वपार करदे ने। कहण तो मुराद वपार भी करदे ने, दुकानदारी भी करदे ने, ते बाबा अमरदास जी का पूरा परिवार जिहड़ा है जिमीदारा भी करदा है। बाबा अमरदास जी दे संतान इन्हां दे घर दो पुत्र ते दो पुत्रियां पैदा होईयां। वड्डे दा नाम सी बाबा मोहन जी, छोटे पुत्र दा नां है बाबा मोहरी जी, वड्डी पुत्री दा नां है बीबी दानी जी, छोटी बच्ची दा नां है बीबी भानी जी। बीबी दानी जी दा आनंद कारज होया भाई रामा जी दे नाल, ते बीबी भानी जी दी शादी उन्हां दा ब्याह उन्हां दा आनंद कारज होया भाई जेठे दे नाल जिहड़े बाद विच गुरु रामदास बने। बाबा अमरदास अपने पिंड विच टिके ने, पिता इन्हां दे भी दया दी धर्म दी मूर्त ने, ते इन्हां दे मन विच इक फुरना उठदा है जिहड़ा मन दा टिकाओ वे। जिहड़े असी प्रभु तो कई जन्मां दे विछड़े हां, कोई तरीका है कि अंदर दी भटकना दूर हो जाए ते उस प्यारे प्रभु जी दे चरणां विच लीन हो जाइए। ते इसे गल नूं मुख रख के बाबा अमरदास जी ने एक टीचा मिथ्या है कि हर साल मैं गंगा ते जाके इशनान करना है, दान पुन करना है, आए गए दी सेवा करनी है। हो सकता है कि गंगा दा इशनान करन दे नाल मेरे इस मन नूं टिकाओ मिल जाए, मेरा अंदर किते भटकनों बच जाए, मैं उस प्रभु दे चरणा विच लीन हो सकां। ते बाबा अमरदास एक दो साल नहीं, 19 वारी ओ तीर्थ इशनान करन गए ने। कईयां ने शब्द भी वरत्या, खैर तीर्थ इशनान गंगा इशनान हर वार करन जांदे ने, ते महीनियां बद्दी समा लगदा है पिंड बासर के तो गंगा इशनान करना, ते जाना जाके उत्थे दान पुन भी करना, उत्थे बड़े आराम नाल गंगा दा इशनान करके साधुआं महापुरुषां दे कोल भी बहना। ते अज 20 वार जदों बाबा अमरदास जी गंगा तो वापस पै आउंदे ने, ते रस्ते विच एक पिंड आया मेड़ा, जिसनूं पिंड मिठड़ा भी कहा जांदा है। इस पिंड दा एक बहुत ही स्याणा विद्वान पंडित है जिहड़ा ज्योतिष विद्या विच भी बहुत माहर है, ते इन्हें अपने घर दे विच एक मानो सरां दा ढंग तरीके नाल मकान बनाया है कि जितने भी यात्री गंगा इशनान करन जान ते जां गंगा इशनान करके वापस आउंदे होण, उन्हां नूं जल पानी की सेवा करनी, प्रसाद पानी उन्हां लई तैयार करना, ते रस्ते की थकावट दूर कर ली, जितने दिन भी कोई रहना चाहे ते उह विद्वान पंडित अपने घर विच रखदा सी। ते यात्रियां दा एक सुभा सी कि उहदे घर विच दो चार दिन आराम करन तो बाद जान लग्या उहदी तली ते कुछ ना कुछ माया जरूर रख जांदे सन भी चलो इह बंदा सेवा करदा है। बाबा अमरदास अज इह भी उस पिंड विच पहुंचे ने, उस पंडित विद्वान दे घर अंदर उहदी सरां दे अंदर उन्हां ने बड़े आराम दे नाल जाके प्रसाद पानी छकिया। कहन लगे गर्मी दे दिन सन, ते बाबा अमरदास जी उहदे घर तों बाहर निकल के उहदे लवाए हुए बाग दे अंदर जाके टिक गए, ते गर्मी अतदी पैंदी है। बाबा अमरदास उस रुख दी छां थले टिके ने, ते किन्ने इस पंडित दा नाम सी दुर्गो, सार सुत भिंबी गोद दा सी। ए पंडित अपने घर तों बाहर निकलिया, बाग विच पए हुए यात्रियां दे कोलों लंघिया, ते ज्योतिष विद्या दा माहिर किन्ने ने उसे वक्त इस पंडित ने ना बाबा अमरदास जी नूं लेटिया देखिया, ते बाबा जी वक्खी परने हो के पए ने, चरणा दियां दोनों तलियां दिसदियां पईयां ने। विद्वान पंडित सी, बाबा जी दे चरणा दी तलियां विच उहने पद्म देखिया, ते देख के सतगुरु के बाबा जी दे चरणा विच खलो गया। कहन लगा हे मना, मेरी विद्या कदी झूठी नहीं हो सकती, जे इहदे चरणा दे अंदर पद्म है ते एक गल ध्यान विच रखना, जां ते इह आउण वाले समें दे अंदर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा,
ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮ ਵਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਦਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਆਪਣੀ ਬਾਂਸੁਲੀ ਥੈਲੀ ਖੋਲੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੁਰਗੋ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਾਟ ਤੂੰ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਣੇਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਰਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੈਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਰੇਖਾ ਰੇਖਾ ਫਲੇਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦਣ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਰੇਖਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਰੇਖਾ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਦਮ ਪੜਿਆ ਪਦਮ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਰਗੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਮਕਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਏ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਕੇ ਤੂੰ ਦਾਤ ਲਈ ਏ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪਣਾ? ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਖਿਰਦਾ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਏ? ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਗੁਰਾ ਹੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਪਿਆਵਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇਈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਕਰ ਦੇਈ, ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਸੋ ਜਿਹਾ ਨਗੁਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੀ ਖਾਣਾ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਅਮਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ, ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਗੁਰੇ? ਬਸ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਗੁਰੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਬੰਦਾ ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਏ,
साहब कहते ने जो जन्म होया ना तो बचपन में एक आस है अजे कुछ दिन खेडन दे ने खाण पीण दे ने ते अजे मेरे ते जवानी आनी है ते जवानी तो बाद इस मनुख नूं एक आस है कि पुत्र धियां वड्डे होए अजे इन्हां दी कमाई नाल मैं सुख मानना मेरे ते बुढ़ेपा आना है ते गुरु ग्रंथ साहब कहिंदे ने उस बंदे नूं मैं पुछ के देखा जिन्हें बचपन का समा जवानी की इंतजार विच बतीत किया जवानी बुढ़ेपे दे आउण दे समय विच बतीत कर दिती हुण बुढ़ेपे तो बाद की आस ला के बैठा की मिलेगा ते पुछया सतगुरु तुसी दसो कहन लगे मेरा ते उत्तर इको ही फसल बीजिए एक आस है जे जमीन विचों निकलनी है अजे कच्ची कोमल फसल ने निकलना जेड़ी फसल जमीन विचों निकल आवे एक आस है अजे ने डटरी होना है अजे ने कच्ची अजे पक्की होना है ते जेड़ी फसल पक जाए ओदे ते इको आस है अज जा कल जिमीदार आवेगा अपने मजदूरां नू लिया के दातरियां नाल कट के इन्हां नू घर लै जाए। कहन लगे सजना तू तां परमेश्वर दी फसल है ध्यान रखी कि ए रब दी मर्जी है बचपन ओ कच्ची फसल ही जवानी डडरी फसल ही ते जदों केस कालियां तो चिट्टे हो गए उदों फसल पक चुकी है उदों तां सिर्फ इको ही आस है अज जां कल मौत जिमीदार ने आउणा है उन्हें इस फसल नूं कट के अपने नाल लै जाणा पक्की हुई फसल केवल कत्ती जांदी।

बना देता है। कह लगे बच्चिए मन मेरा मनूर ही गुरु नानक दे चरणा विच मैनू लै जा, जिदी बाणी सुन के टिका मिलिया ते जिदा मैं ओदा हो जावांगा उदन पता नहीं किन्ना कु आनंद मिलेगा। ते बीबी अमरो ने एक शब्द कहा, कह लगी पिता जी गुरु नानक साहब ता हो गए ने अंतर ध्यान, उन्हां दी जोत हुण मेरे पिता गुरु अंगद साहब दे अंदर विराजमान ने, मेरे पिता जी ने खडूर। ते कहन लगे धीए जिथे गुरु नानक दी जोत है तू मैनू उथे लै जा, मैं हो सकदा तेरे पिता दे चरण परसा ते मेरे अंदर नू टिकाओ मिल जाए। उस वक्त बीबी अमरो ने कहा पिता जी गुरु पिता दा हुक्म है, साडी आग्या तो बिना घर नहीं आउणा, जे मैं चली गई ते गुरु पिता की कहणगे। ते बाबे अमरदास ने क्या कहन लगे धीए जिस गुरु की बाणी दे विच इन्ना बैराग इन्नी कृपा है, जदों मेरे वर्गे सड़े हुए मनूर नू गुरु पारस दे कोल लैके जाएगी ना ते मैं तरला लैके कह देंगे दाता ए अमरो तेरे करके नहीं असल विच मेरे वर्गे सड़े हुए मनूर वास्ते आई, तू चल तो सही। अज एक बीबी जेड़ी बाणी विच रंगी है, चेते रखियो जे किते बीबियां बाणी नाल जुड़ जाण ते पूरे दा पूरा घर तब्दील हो सकदा है। ध्यान दिया जे गुरमत विच बड़ी वड्डी थां है, बेबे नानकी बाणी नाल जुड़ी है, ते गुरु नानक कहिंदा रबाब मैं बेबे दे रुपइयां दी लैणी है। कमाल दी गल बीबी अमरो बाणी नाल जुड़ी है ते बाबा अमरदास जिहड़ा नगूरा है अज उस बीबी दी पढ़ी हुई बाणी उस बीबी दा कमाया होया जीवन उस बाबे बजुर्ग नूं गुरु दे घर विच लैके जा रहे। एक नहीं बेअंत उदाहरणां ने, माता खीवी बीबी है जिन्हों सत्ता बलवंत कहिंदा मां जदों तेरे लंगर विच आ के बहिंदे आ ते अंज लगदा है जिवें धुप विच सड़े हुए बंदे नूं संघने पत्तियां वाला रुख उहदी छां मिल गई होवे। ध्यान रखना बीबी भानी है बाणी नाल जुड़ी है जिहड़ी पिता दी सेवा करके कहिंदी है जान ना देसा सोडियां खोरस आजार ना जरिया जावे। बीबी कदी तको वीरो वल किन्नी कु गुरमत रंगी है, जे घर पुत्र पैदा होए ते बीबी वीरो दे पुत्र कुर्बानी पै करदे ने। माता गुजरी वल तको, माता साहिब कौर वल तको, माता सुंदरी वल तको, कदी ओ बीबी शरण कौर वल तको जेड़ी चमकौर दी गड़ी विच शहीदां दा संस्कार पई करदी है, कदी उस बीबी हर शरण कौर वल तको जेड़ी जमराव दे किले विचो संदेश लैके पेशावर दी धरती ते पहुंचदी भी हरी सिंह नलवे दे कोल। खैर एक बीबी ने बाणी पढ़ी ओदा कमाया होया जीवन अगे अगे बीबी अमरो पिछे पिछे बजुर्ग बाबा अमरदास जिहदी उम्र 7 साल दे करीब है ते कहन लगे बच्चिए मैं बैठना वा बाहर ते तू घर जा के पिता तो पुछ के आ कि अज तेरे दर ते एक नगुरा आया है, तेरे दर ते एक मनूर आया है, तेरे दर ते एक वाहगुरु तो विछड़िया होया आया है, विछड़िया नू मनाण वालिया नगुरिया दी मैल लाण वालिया मनूरां तो कंचन करन वालिया इस बुढ़े बाबे दी उम्र कंधी उत्ते रुखड़ा है, जे त्रुठा ते अज इहनू अपने चरणा नाल जोड़ लै। बीबी अमरो घर चली गई, कहिंदे ने गुरु अंगद साहिब बैठे ने, जा के पिता गुरु दे चरणा विच नमस्कार कीती आशीष दित्ती पिता ने। कहन लगे बच्चिए बिना बुलाया तो पहुंची है? कहन लगी सतगुरु आप नहीं, अज एक जग्यासु तड़फदा पिया ही तेरे चरणा दी छू चाहुंदा है। ते सतगुरु गुरु अंगद साहिब कहन लगे धीए 3 दिन हो गए ने ओदे होकियां ने मैनू आराम नहीं करन दिता, हुण जदों मिलन दा समा आया ओनू बाहर बिठा के आ गई है, आ देख मैं अज सवेर तो ओदी इंतजार पिया करना। जदों गुरु नाल नेह होवे ते गुरु भी सिख दी इंतजार करदा जे। साध संगत बाबा अमरदास गया कदी पहला गए सन जिदन भतीजे दा विआह सी, ओदन भाई लैणे नू गलवकड़ी पा के मिलिया सी कुड़माचारी दे नाते नाल। ते अज गुरु अमरदास ने देखिया बजुर्ग बाबे दे केस दुध वर्गे चिट्टे ने, मोढे ते परना रखिया ते सिर उते खद्दर दा जिहड़ा कपड़ा ओ बन्निया दस्तारा, ते किन्ने अखां रो रो के सुजियां पईयां ने,
ਤੇ ਜਦੋਂ

सम्मान योग चवर तखत दे मालक परमेश्वर दा खिरदा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागी हो इलाही गुरबाणी दे कीर्तन नाल सतगुरु नानक देव बाबा जी महाराज उन्हां दी बख्शिश कृपालता लै रहे सी। आओ जितनी कु सूझ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करके बख्शनगे गुरु बाबा जी दे पवित्र जीवन और गुरबाणी दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभन तो पहला कृपा करके एकाग्रता बख्शो, बच्चियां नूं भी चुप करा के कृपा करके एकाग्रता दा दान बख्शिया जे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द सरवण किया है, बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहमिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गया। ए शब्द दी रहाओ दी

नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया। परम सम्मान योग चवर शतर तखत दे मालक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर रात्रि दे इस विशेष गुरमत समागम दी हाजरी भर रहे गुरु सवारियो, आप जी ने अमृत बचना दा कीर्तन गुरु प्यार वालियां पासों सरवण कीता है। आओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी कृपा दा सदका हजूर दे अमृत बचना दी विचार आपां कर सकीए। खास करके अज सवेरे अमृत वेले जिथे हरिमंदर साहिब विचों धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रब्बी फरमान नू अकाली हुक्म नू आप जी ने सरवण कीता, उथे अज कत्तक दा महीना प्रारंभ होया है। सारे महीने विचों दो गल्लां बड़ियां स्पष्ट ने ते विचार भी आपां अज दे दिन नाल संबंधित ही करनी है। पहला बचन है कि कर्म जो तू इंसान कमा रहा है अपने किते हुए कर्मां दा दोष दूसरे दे सिर ना मढ़। पर अखीर विच इक कृपा कीती उहने कि जे तू कर्म माड़े कर लैने ते कत्तक दे महीने विच साध संगत गुरु दी संगत दा आसरा लै तेरे अंदर दे सारे चिंता झोरे अपने आप ही मुक जाणगे। सतगुरु ने दो बचन अज कहे, पहला रोग है फिर उस रोग दी औषधि उस दी दवाई है। रोग की है कि कत्तक कर्म कमावने दोष ना काहू जोग, ते की कर्म कमाया कहन लगे परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिनमें कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस तै रोवे रोज। अखीर विच एक बचन क्यों ने कहन लगे जे तू इस चिंता नू इस झोरे नू खत्म करना है ते फिर एक काम कर के कत्तिक होवे साध संग बिन सह सब सोच सिर्फ

जी छीनत वस्त्र दीन बहु साज सुदामा अपदा ते राखिया गणका पड़त पूरे ते काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए।

शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सुकहु तल गुर सेविए एहन सहज सुभाए

दस दस कैदी हथ बन्ने खड़े ने, जिन्हां हथां विच फावड़े सन खुदाई कर रहे सन उन्हें कैदियों आखे इन्हों धक्का मारो टोए दे चुन। वो कैदी बेचारे उन्होंने धक्का मारते सन उन्हां कैदियों जिन्हां दे हथ बन्ने हुए थे, और फिर उन्होंने कैदियों आख्या जाता सुन इन्हां ते मिट्टी पाओ जिंदा ही दब देना, इस तरह ही करता सी। कल मैंने एक सज्जन ने दसिया कि लाशां जो ढो रहा सी म्यूनसिपल कमेटी की गड्डी विच, लाशां जद उतारियां जा रही सन ते किधरे एक सिसक रहा सी और उहदी अखां भी किधरे खुल पईआं। उन्हें आख्या कोल खड़े वे वीर मैनू पानी पा दे, खून शरीर चो बहुता निकल जाए ना तो प्यास ही लगती है, तड़पदा होया बंदा पानी मंगता है, हाए पानी, रोटी नहीं मंगता पानी मंगता। ते नाल खड़ा होया पुछदा है उस तो बेदियां अखां खुलियां की आखदा पिया है, पानी मंगता है। दूजी गोली मार दिती अखां ठंडियां कर दितियां। फिर मैं कहनी हिटलर ते हर वक्त मौजूद आंदा, कबीर भी हर वक्त मौजूद आंदा, चंगेज खां हर वक्त मौजूद आंदे ने, पर मैं इतनी अर्ज करदे हां गुरु गोबिंद सिंह जी भी हर वक्त मौजूद आंदे ने अपने पंथ दे रूप विच, अपने खालसे दे रूप विच। इत्थे औरंगजेब भी मौजूद है, चंगेज खां भी मौजूद है, पर खिमा करनी नामदेव भी मौजूद रहिंदे ने, तुलसी भी मौजूद रहिंदे ने जो कहिंदे रहिंदे ने, वो भी ने जो कहिंदे ने सारे मेरिया नजरां दे थल्ले, ते वो भी ने जो कहिंदे ने जो मेरे पैरां दे थल्ले ने ये मेरे अपने ने बाकी नहीं, बाकी कौन आउंदे ने। ते मेरे नाल अपणंत, मेरे नाल सांठ वांठ करनी है, मेरे पैरां दे थल्ले आओ। ते पैरां दे थल्ले ते जिहड़ा आ गया कुचलिया गया रह की गया, पर उहदी कोई जिंदगी है, उहदा कोई जीवन है, उहदी कोई आत्मा रह जांदी है। ये दो तरह की सोचनी है संसार विच, एक राज सिंघासन की सोचनी, एक राम सिंघासन की सोचनी। राम का सिंघासन की है, कबीर ने, नामदेव ने, भाई गुरदास ने बड़ी लंबी व्याख्या की है। एक सवैया मैं थोड़े सामने रखा है जिदी मैं तशरीह करनी है थोड़े सामने। ते राज सिंघासन की है, दो लफ्जों च मैं कह दिया, पैरां थले रखना है, बस इन्नी गल। राम सिंघासन की है, नजरां थले रखना है, अखां दे च रखना है, अखां थले रखना है, अखां दे च रखना है। ते जिन्नू अखां दे च रखोगे खिमा करनी किसी अंग च अगर कोई तकलीफ हुई अख ते रोवेगी, लाजमी रोवेगी। मैं समझदा ये हरिमंदर, ये अकाल तख्त अखां तले नहीं सी भारतवासियां दे, तदी ते नहीं रोईया, तदी ते अख च हंजू नहीं आया, तदी ते पीड़ा नहीं हुई। और आखदे ने जख्म भरने ने, जख्म इंज नहीं भरने भरे जाते, जख्म ताई भरे जाते ने तुसी बोलो सानू भी बोलन दे, तुसी बोल दे हो असी भी बोलांगे, तुसी कुछ कहंदे हो सानू भी कुछ कहन दो। जो कह सकते ने ते जिन्हां दे उत्ते कहण दी बहुत वड्डी जिम्मेवारी है उन्हां नूं तुसीं बंद करके रख दिओ, ते एक धुआंधार बोली जान बोली जान बोली जान, ये कित्थों दा इंसाफ है? ये ते कोई इंसाफ नहीं है। बिल्कुल हकीकत मैं थोड़े सामने रख रहा हां, और खिमा करनी साहिबां दे अगों मैं रोज अरदास करके आना, दाता मेरे जबान चो कोई गलत गल नहीं निकलनी चाहिए, तो मैं ना किसी नूं भड़काना ते ना ही कोई गलत बयानी करदा, ते ना ही राजनीतिक होने का मैनू शौक। मैं ते संत सिपाही नूं मनदा, केवल सिपाही नूं मैं मनदा ही नहीं, केवल सिपाही ते मैं लानत पाना। केवल सिपाही की होंदा? कुछ भी नहीं, दुष्ट होंदा, जालम होंदा। सिपाही ते वह पूजनीक जिहड़ा संत होवे, जो संत नहीं वह सिपाही नहीं, वह जालम होवेगा, वह दुष्ट होवेगा, वह महा अत्याचार करेगा जिवें कातल करदे ने। इस वास्ते गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिपाहियों की फौज नहीं बनाई सी, संत सिपाहियों की फौज बनाई सी। संत सिपाही ये रूपरेखा

चंदन बड़ी कीमती लकड़ जिड़ा चंदन थानू आम बाजार च मिलता नकली चंदन बावन चंदन ने वह तो मैं देखे सैकड़े रुपए किलो के हिसाब न तोल के बिकता है जोड़ा आसाम मैसूर के बागात तो बड़ा कीमती है बहुत महंगा है बहुत महंगा है चंदन की लकड़ ये थोड़े जि बूटे मैं इंदौर के एक बाग देखे सन महाराजे के महल दो लगे हुए सन छोटे छोटे भाई साहब कहने चंदन की बार जैसे दीजियत बबूर द्रम कंचन सपट मद कांच ग्रह राखी भाई साहब कहने किसान जब मैं देखा कि चारों पासे चंदन की वाड़ ला रहा सी तो मैनू पूछना पिया अंदर तू बोया की है इन्नी कीमती लकड़ यह चंदन यह हजार रुपए मुल बिकन वाला तू चारों पासे इसकी वाड़ पिया लाना पहले अंदर दस तू केसर बीजे की बीजे आखिर अंदर है कि आखन लगा अंदर ते किकरां दे बूटे लाए ने ते किकरां दे बूटियां दे आले दुआले चंदन की वाड़ चंदन की बार जैसे दीजियत बबूर द्रम कंचन सपट मद कांच ग्रह राखी है भाई साहब कहने फिर मैं एक होर करा माद वेखी उस बंदे दे घर दे बक्सा सी सोने दा सोने दी तिजोरी कौन बनांदा है सेफ ते आखिर लोहे दी बनेगी ना तिजोरी ते लोहे दी बनेगी उन्हें सोने दी बनाई बक्सा बहुत वड्डा ते भाई जी कहने मैं उस तो पुछया जे तू बक्सा सोने दा बनाया एदे च हीरे रखे ने पन्ने नीलम कहिंदा नहीं कच ते पत्थर रखे कंचन सपट मद कांच ग्रह राखी सोने दे बक्से दे कच ते पत्थर ते चंदन दी वाड़ किकरां दे आले दुआले ते भाई जी तो पुछी तुसी कहना की चाहते हो साधन दुराए के असाध अपराध करे उल्टई चाल कली काल ब्रह्म पाकी इस कलयुग दे जिस मौजूदा दौर दे उल्टी चाल की जिदी जिंदगी बिल्कुल किकरां दी तरह विकारी लोभी हंकारी ऐसा कीड़ा ऐब है जिहड़ा अंदर ना होवे ते बार चंदन दी वाड़ धर्म का मुखी जी धर्म का मुखी है गुरुद्वारे का मुखी है जी प्रधान साहब ने ते लोगों नूं भुलेखा पै जांदा जी प्रधान साहब ने ते बिल्कुल गुरु नाल जुड़े हुए होणगे क्योंकि चंदन दी वाड़ जो दिखाई देती प्रधानगी जो दिखाई देती गुरुद्वारे की पर यह नहीं पता थोड़ा जि अंदर झात मार के देख बूटे किकरां दे नौर कख नहीं बड़े बड़े शराबिया दुराचारियों ठगा कौम द्रोहियां पंथ द्रोहियां मैं गुरुद्वारियां का प्रधान वेख्या गुम फिर के ए कुछ मैं वेख्या वाड़ चंदन दी ते बूटे किकरां दे जिंदगी किकरां वर्गी ते जिम्मेवारी की धर्म के मुखिया से डब्बा सोने का है बार लिबास धर्म का धर्म के मुखी ते खिमा करनी अंदर कोरी गंदी सियासत दे कच तो इलावा होर कुछ नहीं किया सियासत दे चौंदा है बस मैं लेना ही लेना है धर्म दे चौंदा मैं देना ही देना मैं जान देनी है मैं अपना धन देना है मैं परिवार दे देना है सियासत ये देना नहीं जानती मैं लेना है मैं कौम कोलो लेना है पंथ कोलो लेना है देश कोलो लेना है देश दियां हड्डियां कोलो लेना है पंथ दे खून कोलो भी लेना है लेना ही लेना है देना कख भी नहीं खून भी लेना है खून देना नहीं कख नहीं देना देन की कोई बिरती नहीं जिहड़ा लैण की बिरती रखदा उह ते सियासतदान है ठीक है जे पिछे सियासतदान जेलां कढ़दे रहे ते हुण सिंघासण ते बैठे ने जेल कट्टण का मतलब की हुंदा मुआवजा दे साल असी जेल कट्टी है हुण तुसी 30-40 साल लई सानू मिनिस्टर बनाओ असी बैठना है पुराने रजवाड़े जे किधरे बैठ जाण एक दफा सिंघासण ते पीढ़ी दर पीढ़ी सिलसिला उहनां दा चलदा सी कि मैं कहनी डेमोक्रेसी दे च की है पीढ़ी दर पीढ़ी सिलसिला चलता और की है कुछ भी नहीं ऐसे कुछ भी नहीं हकीकत की है और कहने ने इस देश दे डेमोक्रेसी है इस वास्ते तो इतने एनएसए है तुसी कुछ भी सरकार के खिलाफ बोलो जेल क्योंकि जमहूरीयत है इतने जमहूरीयत है इस वास्ते इतने हर प्रांत का निजाम फौज के आसरे से चलता है गोलियां के आसरे से चलता है तोपां के आसरे से चलता है क्योंकि इतने जमहूरीयत है और इत्थे कोई धर्म का भी सही प्रचार करे तो नहीं कर सकता क्योंकि इत्थे जमहूरीयत है दिवाली का दिन होवे ते स्टेज ठंडी होवे सारी रात मैं इत्थे ढाडी सिंघां दे गीत सुनदा सी ते कन्नां विच कुछ भी बोल नहीं पाए

शरीर नु तो लेने नाल मन ते नहीं धोता जांदा, विचार ते शुद्ध नहीं हुंदे। तन नु रोज धोंदा रहो, सुभाव नहीं बदलना। ऐसा भाई गुरदास जी ने एक गल आखी, कहन लगे तुमने अमृत सिंचिए, तुम्हें दी वेलन कोई रोज मनुख अमृत सिंचदा रहे, मिठा घोल घोल पानी विच उस दे वेल दी जड़ विच पाउंदा रहे, ते की तवक्को रखदा भी तुम्हें दी कुड़त्तन मिठास विच बदल जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच हजूर ने ख्याल दिता है, कहिंदे ने

0: रोज
1: अमृत सिंचन नाल भी निम का सहज नहीं जाता, भाव सुभाव नहीं बदलता। सहज का अखरी अर्थ सुभाव, क्योंकि जेड़ी गल सुभाव च शामिल हो जाए, जेड़ी गल सुभाव च शामिल होवे वह मनुख सहजे कर लें, ते जेड़ी गल सुभाव च शामिल ना होवे जे वह करन दी कोशिश भी करे तो वह करन लगे उसनु उचेच करनी पैंदी। इसलिए सहज लफज सुभा नाल शामिल हुंदे, सहज सुभाए होए सो होए। सहज हमेशा उस गल विच हुंदी है, उस काम विच हुंदी है जेड़ी सुभाव च शामिल हो जाए। तो हजूर दा कहन दा भाव है, कहिंदे ने निम नूं कोई अमृत सिंच लाए पर उनका सहज नहीं जांदा, भाव उनका सुभाव नहीं बदलता, क्योंकि निम नूं अमृत तां बाहर पाया गया है ते सुभाव उनके अंदर है। इस तरह हजूर कहिंदे ने कई गल्लां मनुख दे तन नाल सांझ रखदियां ने, बाहर नाल सांझ रखदियां ने। तन दा कपड़ा मैला हो जाए, तन मैला हो जाए, तन ऊपर दी चीज है, इनू मैल बाहरों लगनी, बाहरों पै खाक मिट्टी ते तन ते मैल चढ़ जाए, ते उस मैल नू बाहरों पई मैल नू उतारन लई बाहर पानी दी लोड़ है। तन दा कपड़ा मैला हो जाए, साबण दी जरूरत है। हजूर कहिंदे

मानुख बिन बुझे व्यर्थ आया, अनुख साज सीधार बहु करता, ज्यों मृतक ओढ़ाया रहा। ताए ताए कृपण श्रम कीनो, एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा, एक ही काज ना आया। कारया भरण सवारी सिज्जा, कामन थाट बनाया। सांग ना पायो अपने घरते, पेख पेख दुख पाया। सारो दिन से मजूरी करता, तो मुसला कराया।

महान मनुख पूरनते ते मैं नहीं कमांगा। महान मनुख क्यों? क्यों धार्मिक पहलू ते मुकम्मल सन, लेकिन समाजिक तौर ते बिल्कुल टुटे हुए, आर्थिक दुनिया नु बिल्कुल छड़ गए, नैतिक दुनिया नाल दूर दा भी संबंध ना रखिया, जिसका जिक्र भाई गुरदास जी इस तरह करते ने कि सिद्ध छप बैठे पर्वती कौन जगत को पार उतारा। सिद्ध पुरुष तो मुराद ओ सिद्ध जो गल नु समझ देन, जीवन नु समझ देन, जीवन दी बारीकियां दे जिन्होंने बहुत झात मारी है, जिन्होंने असलियत का पता है, जीवन का पता है, अगर ओही जिंदगी तो किनारा कश होके ते पहाड़ां दी कंदरां दे जा बैठन तां किसे हद तक मनुख दी जिंदगी ते कंदर ही बन के रह जाएगी। मनुखता केवल पहाड़ां दीआं कंदरां ही बन के रह जाएगी। हू बहु गुरु नानक देव जी महाराज दे वक्त यही हालत सी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने संसार दी खातर निरंकार नहीं छड़िया और निरंकार दी खातर संसार नहीं छड़िया। अक्सर ऐसा देखा गया है, एक मनुख धन दी खातर धर्म छड़ देंदा है, दूजा मनुख धर्म दी खातर धन छड़ देंदा है, पर गुरु नानक देव जी महाराज ने दोहां नूं कबूल कीता और आखिया धन लोक दी खुशी है, धर्म परलोक दी खुशी है। धन तो बिना संसार विच विचरना औखा है और धर्म तो बिना अध्यात्मक आनंद माणना बहुत औखा है। तो पूर्ण मनुख भी ओही है जिदे कुल लोकल जिंदगी संपूर्ण है, ते जिदे कुल परलोक दा आनंद भी संपूर्ण तौर ते मौजूद है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज बचपन तो ही यही सूझ बूझ अकाल पुरख परिपूर्ण परमात्मा तो लेके आए, इसलिए बचपन विच भी आप दी यही सुरत रही। सहजे सहजे जद आप वड्डे होए ते वड्डे होंदियां धार्मिक बिरतियां भी आप दियां वड्डियां हुई, नैतिक बिरतियां भी आप दियां वड्डियां हुई, समाजिक सूझ भी आप दी वड्डी हुंदी गई, ते जवान होंदियां जैसे कहनन जवानी च जोश प्रधान होंदा है, तो जवानी दे नाल नाल धर्म दा जोश भी आप दे अंदर प्रधान होया, इतना प्रधान कि आप किरत कर रहे ने, मोदी खाना चला रहे ने, दिन भर आप रसद देंदे ने नवाब दे नौकरां नूं और प्रजा नूं। एक दिन ऐसा होया धर्म दे जोश ने सुरत नूं इतना उच्चा कीता, एक गिणिया दो गिणिया तीन गिणिया यारां बारां ते जद तेरां दा हिंसा जबान तो निकलिया तो सुरत तेरे विच ही लीन रह गई। तेरां तो बाद अगे नहीं जा सके, तेरा तेरा सब कुछ तेरा तेरा तेरा, इसे ही धुन विच खो गए, इसे विच ही लीन हो गए। किरत करदियां कीर्ति नहीं भुले, ते जो किरत करदियां कीर्ति नहीं भुलिया उदी किरत भी धर्म है, उदी किरत भी बंदगी है। अक्सर पूर्ण पुरखां दा धंधा भी धर्म आंदा है, पर अधूरे मनुखां दा ते धर्म भी धंधा आंदा है। उन्हां दे धर्म दे चों भी संसार दी बदबू आउंदी है, जदके पूर्ण मनुख दे धंधे दे चों भी निरंकार दी सुगंधी आउंदी है, खुशबू आउंदी है, महक आउंदी है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जद इस ढंग नाल बैरागमई अवस्था दे अपनी जिंदगी बतीत कर रहे ने, तो दूर दृष्टि दे नाल समग्र जगत नु वेख्या है। आप नु जल्दी सब पृथ्वी दिस आई, हर पासे नैतिक दुनिया दे च, धार्मिक दुनिया दे च, समाजिक दुनिया दे च, आर्थिक दुनिया दे च आप नु अग लगी हुई दिखाई दित्ती। नाम दी मशक लेके इस अग नु बुझाण दा तहिया आपने सुल्तानपुर दे च ही कीता। लंबी सोचनी तो बाद आपने लंबियां उदासियां नु जन्म दिता, एक एक उदासी बारह बारह साल दी। कई दफा प्रश्न खड़ा होंदा है कि गुरु नानक ने इतना भ्रमण क्यों किया।

तेरी उपमा तोहे बन आवे। धन गुरु अमरदास जी महाराज ऐसी वृद्ध मूर्ति हन जिन्हां दे जीवन दी छाप जगत नू ए उपदेश देंदी है कि उम्र दे किसे भी हिस्से विच मनुख नू निराश नहीं होना चाहिदा। चाहे शरीर बुढ़ा भी हो गया, बिरध भी हो गया, पर मनुख